ना सहाय मुकत माल कनक लाल हीरा मनोरंजन की माया हा हा करत बिहानी आवदा है तामह संतोख न पाया। हस्त रथ अशव पवन तेज तनी पूमन चतुरंगा संग न चालियो इनमें कछुए ऊठ सिधायो नांगा। हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभु के ताके हर हर गाईए नानक ईहां सुख आगे मुख उजल संग संत।

गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पयाले। गावन तुदन रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले। गावन तुदन जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे। गावन तुदनो

कहू सिमट भयो शंकर इकैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबारो असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण कहता। जी अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवा मरे।

तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कहलागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पू

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

दीन करो रख ले वो, दया दीन करो रख ले वो। नान कुहार कोर शरण समैया, वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहुर वाहु

0: नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा, नानक जिस नदर
1: करे मेरा प्यारा,
0: सो हर चरणी चित लाए, सो हर चरणी
1: चित लाए,
0: वाहिगुरु वाहिगुरु।

हर हर गुर गुर करता रे, हर हर गुर गुर करता रे, हर हर गुर गुर करता रे, हर हर

देव सज्जन सिसड़िया ज्यों वै साहिब स्यों मेल कर करे हो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से दे आवन।

तारका मंडल जनक मोती धूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बंदराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता सवदवा जंत पेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे कौ सहस मूरत नन्ना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध विचलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिसद चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत सुभावै सुवारती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो

दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण हो सिफत कसम दी चट्टी तुद डिठे मल जन्म जन्म दी

रैन अंधारी निर्मल जोत, नाम बिना झूठे कुचल कछोत। भेद पुकारे भगत सरोत, सुन सुन माने वेखे जोत। शास्त्र सिमरत नाम दृढ़ामं, गुरमुख शांत उत्तम करामं। मनमुख जोनी दुख सहामं, बंधन टूटे इक नाम वसामं। मने नाम सच्ची पत पूजा, किस वेखा नाही को दूजा। देख कहो पावे मन सोए, नानक कहे अवर नहीं कोई।

नानक कहे अवर नहीं कोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिलावल अष्टपदियां महला पहला कर दसवां, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद निकट वसै देखे सब सोई, गुरमुख विरला बूझे कोई, बिन पह पये भगत ना होई, शब्द रते सदा सुख होई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी।

पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत वख्यान योग अभ्यास करम धर्म किरिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया अनेक प्रकार किए वो जतना उन दाम होम में बो रतना शरीर कटाई होम में कर राती वर्त नेम करे बो पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार नौ कण पृथ्वी फिर चिस जीवे माँ उदास तपी सर थी वह अगन माय होमत प्राण कनिक अश्व है वर भूम दान न्यूली कर्म करे बो आसन जैन मार्ग संजमत साधन निमक निमक कर से कटावे तो भी हो मैं मैल न जावे हर के नाम समसर कश नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीरथ दे छुटे गर्भ गुमान न मन ते हुटे सोच करे दिनस अर रात मन की मैल न तनते जात इस देही को बो साधना करे मन ते कबू न बिख्या टरे जल तो वह बो दे अनीत शुद्ध कहाँ होए काची पीत मन हर के नाम की बहमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहुमूच बहुत सियानब जमका बहु व्यापे अनक जतन कर तृष्णा त्रापे पेख अगे पेख अनेक अगन नहीं बुझे कोट पाव दरगे नहीं सिजे छूटस नाही ओप प्याल मोहे बेआपे माया जाल अवर करतूत सगली जमडाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे सात जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लो रे साथ संग ए हो मैं छोरे जे को जन्म मरण ते डरे साथ जना की सरणी परे जिस जन को प्रभ दरस प्यासा नानक ता कह बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान साथ संग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गनी है सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल किरीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेक है सगल सिर साजना सुख दुख जन समदिष्टेता नानक।

करन करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपने गत मेरे जानो आपे आपन संग आप प्रभराते तुमरे उस्ताद तुमते होए नानक अवर न जानस कोय सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया साथ संग दुर्मत मल हिरया सगल उद्दम मैं उद्दम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जस सुन रसन।

जिनकी आतिस चीत रख नानक निभि नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दिष्टानी जिंतु सात सवार सिगारिया गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जो बन भोजन सुख सूद बिरद पया ऊपर साग सैन मुख पयाऊ बैठ को दैन ए निर्गुण गुण कछु न बुझे बख्श लियो तै नानक सिजै जय प्रसाद तर ऊपर सुख बसे सुत प्रात में बनिता संग हसे जय प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमूला जय प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संग सात बसा दीने हस पाव कर नेत्र रसना तिसे त्याग वर संरचना ऐसे दो गुण अंध ब्यापे नानक काढ ले ओ प्रभापे आद अंत जो राखन हार तिस्यो प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नव निध पावे तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर ससदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावे दरगे मान तिसे बसारे मुगदे अजान सदा सदा ए पूलन हार नानक राखन हार पार रतन त्याग कौड़ी संग रचे सार छोड़ छूट संग मचे जो छड़ना सो स्थिर कर माने जो हो बन सो दूर पर आने छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाय तिस पर हरे चंदन लेप उतारे तोय गर्द प्रीत पसम संग होए अंधकूप में पतत बिकराल नानक काढ ले ओ प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेक अंतर मल माया छपस नाहे कछ करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन स्वाह कल्पातर कैसे तरे अथा जाके अंतर बसे प्रभ आप नानक तेजन सह समात सुनंदा कैसे मार्ग पावे कर गे ले हो उड़ निभावे कहाँ बुझारत बुझे डोरा निस्कही है तो समझे पोरा कहाँ बिसन पद गावे गुंग जतन करे तो पी सुरपंग कै पिंगल पर्वत पर पवन नहीं होत ऊहा उस गवन करतार करना मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे संग सहाय सुवावे नचीत जो बैराय तास्यो प्रीत बलवा के ग्रह पीतर बसे अनद केल माया रंग रसे दिलकर माने मने प्रतीत काल नाया वे मूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मो चूट विकार महालोप त्रो याहू जुगत बिहानी कई जन्म नानक राख ले हो आपन कर करम

सगल समग्री तुमरे सुतरतारी तुमते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी।

अष्टपदी जे प्रसाद क्षति अमृत खाए तिस ठाकुर कौ रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंधत तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे। जे प्रसाद बस

जे प्रसाद सुख सेज सोईजै मन आठ पहर ताका जसगा बीजै जे प्रसाद तुझ सब को मानै मुख ताको जस रसन बखानै।

जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताके जे प्रसाद तुझको न पूछै मन सास सास सिमरो प्रभु उचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अभूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद असवहस्त असवारी मन तिस प्रभु का

जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ का मूल न मनोह विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता को जाप।

संग अगोचर मिलाए, साधक संग सदा प्रफुलाए। साधक संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग हुए सब की रेन, साधक संग मनोहर बैन, साधक संग

साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साधक संग सब कुल

ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा ना पाया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उप्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी कै ना ही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो पड़ा ब्रह्म ज्ञानी सफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै एकै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै वसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी के

नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बाल बाल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी का खोज है महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मान माँ है।

नाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी। नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, उरतार है जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान। निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार, नानक ओह अपरस सगल निस्तार है। अष्टपदी।

मन की वासना मन ते टराय। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोड मदे को ऐसा परस। वैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न। कर्म करत होवै नहि कर्म, तिस वैसनो का निर्मल धर्म। काहू फल की ईर्ष्या नहि बादशाह, केवल भगत कीर्तन संग राचै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवरह नाम जो पावे, नानक ओह वैष्णव परम गत पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मलक होवै, तिस भगवती कीमत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती।

बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चहवर नाम है जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए साध संग पावै जन कोए।

कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपेक्ष आत्म निकोर, कई कोट पर दर्प कह रह, कई कोट पर दुख न करह, कई कोट माया

कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रसभोगी कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पात्र बिरख निपजाए कई कोट पवन पाणी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्यर सूर नखियत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र

के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीवह मरह है, कई कोट बहु जोनी फिरह है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट का लह थक पाहे।

कही कोट दर्शन प्रभ प्यास तनको मिलियो प्रभ अविनाश। कई कोट मंग है सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनको आप होए सो जिनको होए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन। कई

सोए। कई कोट आत्म कई कोट पार ब्रह्म के दास, तन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते सदा निहार है को नेत्रे।

कर कृपा जिसे अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले खिन मह नीच कीट कौ राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै जाको अपनी करै बख्शीस ताका लेखा न गनै जगदीश जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बनत्या बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई।

कबहु मां क्रोध विकराल, कबहु सर्व की हो त्रवाल, कबहु होए वह बड़ राजा, कबहु भिखारी नीच का साजा, कबहु अपकीर्त मह आवे, कबहु भला भला कहावे, जो प्रभ राखै तिवहि रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै, कबहु होए पंडित करे बखियान, कबहु मौन धारी लावे ध्यान, कबहु तट तीर्थ इसनान, कबहु

सबते आप जाने बलवंत, किनमें होए जाए पसमंत, किसे न बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुवारी। गुरप्रसाद मिटे अभिमान, गुरप्रसाद जाका मिटे अभिमान, सोजन नानक दरगह प्रवान। कोट कर्म करे हाँ तारे, श्रम पावे सगले बिरथारे, अनेक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर फिरे अवतार। अनेक जतन करे आत्म नहीं द्रवै, हर दरगह कहो कैसे गवै, आपस को जो भला कहावै, तिसे भलाई निकट न आवै। सर्व की रेन जाका मन होए, कहो नानक दा की निर्मल सोए।

अष्टपदी संत कै दुखन आरजा कटाए, संत कै दुखन जमते नहीं छुटाए, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक में पाए, संतन कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत कै दुखन थान प्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जी कराए, नानक संत संग निंदक भी तराए, संत के दुखन ते मुख पवाए, संतन कै दुखन काग ज्यों लवाए, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन तगत जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा मह जलाए, संत कै दुखन सबको छलाए, संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच नीचाए, संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावै ता ओए भी गत पाहे, संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन ना पाई, संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन, संत के निंदक और सर्व रोग, संत के निंदक और सदा बिजोग,

संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी महाअहंकारी, संत का दुखी सदा भिखारी।

संत का दुखी उंबल लाए, ज्यों जल बिहोन मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राज जाए, ज्यों पावक इंद्र नहीं त्रापाए। संत

आसर बन रखो नानक दूत परम पौजाए अष्टपदी मानुक की टेक बिरती सब जान देवन को एक है भगवान जिसके दे रहे अघाए बहुर न तृष्णा लग गए आए मारे रखे को आप मानुक के कृष्णा ही हाथ तिसका हुक्म भूत सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक विघन न लागे कोई उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सदव्यवहार निर्मल रसनामृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो नैनु पेक ठाकुर का रंग साथ संग बिन से सब संग चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगे नानक उजल मथा बड भागीते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एक को एक एक पछाने इत उत्की ओ सोझी जाने नाम संग जिनका मन मान्या नानक तिने निरंजन जान्या गुर प्रसाद अपने आप सुझे तिसकी जानो तृष्णा बुझे साध संग हर हर जस कहत सरब रोग त्यो हर जन रहत अंदिन कीर्तन केवल बख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लागे दुख जिसको हर प्रभ मंचित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक को किससे डरे जैसा सा तैसा दिष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोधत सोधत सोधत सीजिया गुरु प्रसाद।

करै। आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मैं आप अनक जुगत रिच थाप उथाप अविनाशी नाही किछ खंड तारण तार रहो ब्रह्मण अलख पेव पुरख प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभ जाता सो शोभावंत सगल संसार उदर तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के

करे बड़ पागे। नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान। जो किश करे सो प्रभ के रंग, सदा सदा बसे हर संग। सहज सुभाए हो वैसो होए, करने हार पछाने सोए। प्रभ का किया जन मीट लगाना, जैसा सा तैसा दिस जाना। जिस दे उपजे तिस माहे समाए, ओ सुख निदान उन्हों बन आए। आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभ जन एको जान। सलोक सर्व

एक हर नाम रूपवंत होए ना ही मोह है प्रभ की जोत सगल कट सो है तन मनता होए क्या को गर्भ जा सब किस्त इसका दिया दर्भ अत सुरा जी को कहा।

तुझ से चितार, जो कुछ करे सोई सुखमान, भूला काहे फिरे अजान। कौन बस आए तेरे संग, लपट रहो रस लोभी पतंग। राम नाम जब फिर दे माहे, नानक पद से ती कर जाहे। जिस वखर को लै तू आया, राम नाम संतन कर पाया। तजब मान ले हो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। लाग खेप संत संग चाल, अवर त्याग क्या जंजाल। तन तन कहे सब कोई, मुख उजल हर दर गै सोए। ए वपार बिरला वपारे, नानक ताके सद बलहारे। चरण साध के तोय तोय पियो, अरब साध को अपना जियो। साध की तोर करो स्नान, साधु पर जाइए कुर्बान। साध सेवा बड भागी पाइए, साध संग हर कीर्तन गाइए। अनेक बिगंते साधु रखे, हर गुण गाये अमृत रस चखे। उठ गही संत दरियाया, सर्व सुख नानक ते पाया। मृतक को जीवालन हार, भूखे को देवत आधार। सर्व निधान जाके दृष्टि माहे, पूरब लिखे का लहना।

सच हृदय सत मुख कहत सच हृदय सच आयाकार सच वर्ते सच आपासात पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक रूप न रेख न रंग किछ त्रैगुण ते प्रपिन्न तिसे बुझा

कोई सर्व निरंतर एक को सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शन साथ तेरे की चरणी पाओ नानक कै मन ए अनराओ मन सा पूरन सन्ना जोग जो कर पाया सोई होग हरन परन जाकर नित्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर अनद रूप मंगल सज्जा के सर्व थोक सुनिए करता कै राज में राज जोग में जोगी तप में तपी सर्गस्त में भोगी त्याय त्याय भक्त सुख पाया नानक तिस पुरख का किन अंत न पाया जाकी लीला कीमत नाही सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जंदे जंदास नाम ते आवैसे ते गुण में जाको परमाए जन्म मरे फिर

पाई। सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवे नानक हर नाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मण, नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पताल, नाम के तारे सगले आकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब माहे समाणी, सत करम जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब पली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई। सत बचन साधु उपदेश, सत्य जन जा कै हृदय प्रवेश, सत निरत बुझे जे कोई, नाम जपत्ता की गत होए।

सच अष्टपदी, चरण सत सत प्रसन्नहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत त्यावनहार, आप सत सत सबधारी, आपे

प्रभ सोए सतस्वरूप हृदय जिन मान्या करन करावन तिन मूल पछान्या जाके हृदय विश्वास प्रभाया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया पैते निरपो होए बसाना जिसते उपजत समाहे समाना बस्त महले बस गडाई ताको पिन न कहना जाई बुझे बुझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक के मन पर तीत ठाकुर के सेवक के निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ तारे नानक सो सेवक सास सास समारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक के सर पर राखे अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राखे ताकि गतमित कोई न लाखे प्रभ के सेवक को कौन पहुंचे प्रभ के सेवक ऊंचे ऊंचे जो प्रभ अपने सेवक

नामे नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम, कौ नानक जन कै सदकाम। बोलो जस जे बा दिन रात, प्रभ अपने जन की नीदात, करे भगत आत्म कहचाई, प्रभ अपने सुर है समा।

अनिक भगत बंधन नित करे, चरण कमल हृदय सिमरे, सद बलिहारी सदगुर अपने, नानक जिस पर साध ऐसा प्रभ जपने, ए हर रस पावे जन कोई, अमृत पीवे अमर सो होए, उस पुरख का नाही।

मन में रखे हर हर एक अंधकार दीपक परगा से नानक परम मोहो दुख तहते नासे तपत माहे ठांड वरताई अनत पया दुख नाटे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पहुंचुका निरपो होए बसे सगल ब्याद मन देखे नसे जिसका साथ इन कृपा ता

चरण कमल रद में उतारो, करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवत। ए तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मन, एक आस रखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंठ उठतावे, सो तन हर सेवा ते पावे। जिस सुख को नित बाचे मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस शोभा को करे भली करनी, सा सोपा पज हर की सरनी। अनिक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर अपद लाए। सर्व निधान में हर नाम निधान, जप नानक दर गय परवान। मन पर बोधो हर के नाय, दय दिस्तावत आवैठाए। ताको बिगन न लागे कोई, जा कह हृदय बसे हर सोए। कलता ती ठाडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ।

अनेक उपाव न छूट न हारे सिमरत शास्त्र भेद बिचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंछत नानक फल पाए संग न चालस तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटुंब अरबंता इनते कहूं तम कब तुम कवन सना था राज रंग माया विस्तार इनते कहूं कवन छुटकार अस हस्ती रथ सवारी चूटा डंप चूठ पासारी जिंदिए तिस बुझे ना बिगाना नाम विसार नानक।

एक उसके गुण गाओ अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हरिया पूरन पूर रहो प्रव्याप अनेक विस्तार एक ते पै एक अराध पराचत गए मन तन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद।

राखे, गुरुप्रसाद को बिरला लाखे। सो क्यों बिसरे जे बिकते काढ़े, जन्म जन्म का टूटा गाढ़े। गुरपुरे तत एह बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो ओ काम, आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरे नाम जपावो। भगत पाई तरिय संसार, बिन भक्ति तन हो सी चार। सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम। सुख सगल दुख का होवत

जब अकार्य कष्ट नृष्टिता पाप पुन तब कहते होता, जब तारी आपन सुन समात तब बैर विरोध के संकमात, जब इसका बहन चिन्ह जापत तब हरक शोक को किसे व्यापत, जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोका किस होवत परम, आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकुट को किसको गनी, जब एक हर अगम अपार तब नरक सुरक को कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो किच्छाए, जब आपे आप अपनी जोत तरह तब कवन डर कवन कत डरे, आपन चलताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार, अबनासी सुख आपन आसन ते जन्म मरण को कहां बिनासन, जब पूरन करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए, जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, आपन आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा, जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तै बिन मैल कहूं क्या तोता, जय निरंजन निरंकार निर्वाण तै कौन कुमान कौन अभिमान, जय स्वरूप केवल जगदीश तै चल छिद्र लगत को कीस, जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तै किसे भूख कवन तृप्तावे, करन करावन करने हार नानक करते का नहीं सुमार, जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई, जय सर्व कला पेपर बीन तै बेद कतेब कहां कोचीन, जब आपन आप उड़तारे तो सगन अप सगन कहां बिचारे, जे आपन ऊंच आपन आप नेरा तै कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा, बिस्मन विषम रहे विस्मार नानक अपनी कत जानो आप, जय अचल अचेत अपेद समाया उहां किसे बया।

जय अपन आप आपति हारत है कौन कथे कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा नानक आपस को आपे पहुंचा जय आप रचियो पर पंच आकार तय गुण में कीनो विसार पाप पुन तय पई कहावत को नरक को सुरक बंचावत आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पा।

बेअंत अपार नानक दास सदा बलहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहे व्याप प्रतपाल जीयन बोपात जो जोर जो सुत से त्यात जिस पावे तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक एक जानिया जल लगा हर एक नाए तिसकी आस न बिरती जाए सेवक को सेवा बने आई हुकम बूझ परम पद पाई इससे ऊपर नहीं विचार जाके मन बसिया निरंकार बंधन तोर पे निर्वैर अंदिन पूजे गुर के पैर ए लोक सुखे पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले साथ संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो उधार अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का एह सुहाओ आठ पैर प्रभे को नेरा मिटे ज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसाओ मन निच्छे नानक पल पाओ हलत पलत लेव सवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुर की पूरे दिख पूरी दिखिया जिस मन बसे ते साज परिख्या मन तन नाम जपो निवलाए दुख दर्द मन ते पहुँचाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभै खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक मोहर न आवे जाए तिससे दूर कहाँ को जाए उभरे राखन हारते आए नित पौ जपे सगल पौ मिटे प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पुंचर हार सिर ऊपर ठाड़ा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदरत से चन कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख वरदान जिस मन बसे सो होत निहाल ताके निकट न आवत काल।

हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लगा मीठा सगल समग्री एकस कटमाहे अनेक रंग नाना दिष्टाय नौनित अमृत पप का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तैनात कहन न जाय चर विस्माद तिन देख्या जिस आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कटकट व्याप रहा।

तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माही चार कुंड दद से समाये तिसते बिन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद दानक सुख पाओ वेद पुराण सिमृत में देख ससियर सूर नक्षत्र में एक बाणी प्रभ के सबको बोले आप अडोल न कभू डोले।

रब जाने। अंतर बसे बाहर पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रपते सगली उत्पत तिस पावैता करे विस्तार तिस पावैता एक अंकार अनिकला लखी न जाए तिस पावै तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कही है दूर आपे आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए।

की निमाया सबके मद अलिप्त रहे। जो किस कहें सो आपे कहे, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे त ले समाई। इसते होए सो नाही बुरा, और एक हूं कि ने कश करा। आपला कर तू तत्नी की, आपे जाने अपने जी की। आप साच तहरी सब साच, ओत पोत आपन संग राज, ताकि

ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जित हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का ऐ सुआओ जन कै संचित आवे नाओ आप मुकत मुकत करे संसार नानक तिस जन को।

इस बार ब्रह्म निकट कर पे सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंत आस अनित त्या गुतरंग संत जना की दूर मन मंग आप छोड़ बेंती कर हो सात संग अगन सागर तर हो हर तन के पर ले हो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सात संग पज परमानंद।

भंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर ना बारंबार। नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक साध के बचन, अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार। आप तरह लोक निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद बाजे, सुन सुन अनद करे प्रभ गाजे प्रगटे गोपाल। जय जय शब्द अनाहद बाजे, सुन सुन अनद करे प्रभ गाजे प्रगटे गोपाल। महांत के माथे नानक उदरे तिन कैसा थे, सरन जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए। मिट गए बैर पए सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन। मिट गए बैर पए सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन। सुप्रसन्न पए गुरुदेव, पूरन होई सेवक की सेव। आल जंजाल बिकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दिया प्रभधारी, नानक निबी खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सुख मन सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसे सो होत निधान। सर्व इच्छा ताकि पूरन होए, प्रदान पुरुख प्रगट सब लोए। सब ते ऊच बाए अस्थान, बहर न हो वह आवन जान। हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। खेम शांत रिद नवनिद, बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध। विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मद सगल ते उदास। सुंदर चतुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टेता। ए फल तिस जन कै मुख पने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। एहो निदान जपै मन कोय, सब जुग में ताकी गत होए। गुण गोबिंद नाम तुन बाणी, सिमरत शास्त्र भेद बखाणी। सगल मंतात केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटे, संत कृपा ते जमते छुटे। जाके मस्तक करम।

तीर्थ नावा जेत सुपावा विण पाणी के नाय करी जेती सिरट उपाई वेखा विण कर्मा की मिलै लई मत विच रत

असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुह पाख सार असंख मौन लिवलाए तार।

अन है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगांज है, अपांज है, अचूज है, अचांज है, अमीक है, रफीक है, अतंद है, अबंध है।

नमो योग योगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो अप्रेत अप्रेत देवेशो तरमे नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साह साह नमो भूप भूपे

सदा सच्चिदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद करता।

दीयनामं अकामं समस्तो प्राजी समस्तस्तामं तेरा जोर चाची छंद जड़े हैं थड़े हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमस्तुं निरनाथे नमस्तुं परमाते नमस्तुं अगंजे नमस्तुं अपंजे नमस्तुं

चरपट शांत त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृतर में अखाल जोगे अचाल पोगे अचाल राजे अटाल साजे अखाल तरमंग अलाख कर्मंग। सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं।

दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीकन उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंग हीन अभंग नातम एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रति

के सर्वत्र देसा है, के सर्वत्र पेशा है, के सर्वत्र राजा है, के सर्वत्र साजा है, के सर्वत्र दीना है, के सर्वत्र लीना है, के सर्वत्र जा हो, के सर्वत्र पा हो, के सर्वत्र देसा है, के सर्वत्र पेशा है, के सर्वत्र काला है, के सर्वत्र पाला है, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र घंता, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काजा है, के सर्वत्र राजा है, के सर्वत्र सुख है, के सर्वत्र भूख है, के सर्वत्र त्राण है, के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देशा है, के सर्वत्र पेशा है, के सर्वत्र मान्य है, सदैव प्रधान है, के सर्वत्र जापे है, के सर्वत्र थापे है, के सर्वत्र पान है, के सर्वत्र मान है, के सर्वत्र इंद्र है, के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वंग कलीम है, के परमंग फहीम है, के आकल अलाम है, के साहिब कलाम है,

अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री शांद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अप।

श्री वाहिगुरु जी की फतेह है। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौ पही, हमरी करो हाथ दर्शा, पूरन होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावो हो, आप हाथ दे मोहे बचावो हो, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै कर।

तुम्हें छाड़ कोई अवरण त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सेख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दे मुझे उभरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करियो हो रक्षा। राख लियो मोए राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो बुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए

हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैंत जशन उपजायो आदि अंत के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तसी को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सदरण को पल मोबद कियो घट घट के अंतर की

सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना है, काट काट के पट पट की जाना है। जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब या कर्क करता हूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है, आप अपनी बूझ उचार है।

कृपा करी हम परजंग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखिन कोशा करता श्री अस्तोज जब पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांसत फल पावै सोई दुख न दिसै व्यापत को।

साचे साहिबा क्या नाही करती रह करता तेरा सब किश है जिस दे हिस्सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही करती रह साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया जिने छा सा पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो जिस दियां एह वडियाइया कहे नानक सुनो संत शब्द तरह प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंज शब्द तित कर सभागै कर सभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुदवास कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जन कौ से नाम हर कह लागे कह नानक तै सुख होआ।

कथे कथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किन न पाया चतुराई न पाया किन तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिनेत परम भुलाया माया ता मोहनी तने कीती जिन ठगौली पाईया कुर्बान कीता तिसै विटों जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किन न पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच समा

निर्मल जियो निर्मल सत गुरते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाही मनसा सच समाणी जन मृतन जिनी खटिया भले सेवन जारी कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे है गुरु नाले जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवे ता सनमुख सिख कोई जियो रह गुरु नाले गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्म संभाले आप छठ सदा रहे परणे गुर बिन अवर न जाने कोई कहे नानक सुनो संतो सो सिख सनमुख हुए जे को गुरदे विमुख होवे बिन सतगुर मुक्त न पावे पावे मुक्त न होरथ कोई पुछो विवेकिया जाए अनेक जोनी भरम आवे बिन सतगुर मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग जरणी सतगुरु शब्द सुनाए कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाए आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणी है सिर बाणी जिनको नदर कर्म हो वह हृदय तना समाणी पीवो अमृत सदा रहो हर

कहो नानक सब कोई ना हो न जाने। बोलो जी, बोलो जी। प्रपास जन की अरदास, तू सच्चा साईं पुरख वाला सदा सदा हो तो दत्याई। अरदास एक ओवंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवत जी सहाय वार श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरक है। गुरु नानक ले प्याए फिरंगत गुरु ते अमरदास रामदास सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण प्याई। जे डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदावे ताए। सब थाई होए साए दसवीं पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। सब थाई होए साए दसां पातशाहियां दी जोत। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चालिया मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपया वंड छकिया देग चलाई तेग बहाई देख के अंडित किया तिना प्यारियां सच्चियारे की कमाई का ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल तंच रवाए गुरुद्वारियां की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां सिखी केसां सवासां संग निभाई धर्म नहीं हारिया तिना की कमाई का ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां की कमाई का ध्यान करके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होए जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत देग देग फतेह। बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी साहे खालसा जी के बोल बारे। बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाव दान भरोसा दान ताना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर जी के दर्शन स्नान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी के बोल बाले। बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पतदा रखा आप अकाल पुरख वाहिगुरु। हे अकाल पुरख सतगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दाता जीओ। श्री ननकाणा साहिब होर गुरुद्वारियां गुरधामा जिन्हों तो पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दी सेवा संभाल खुले दर्शन दीदार प्यारे पंथ खालसा जी नूं बख्शिश करो। निमाणियां दे माण नितानियां दे ताण मियोटियां दी ओट गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी। धन गुरु नानक साहिब जी महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी शब्द गुरु दाता जी। आप जी दे मुबारक दर ते अरदास बेनती है सच्चे पातशाह जी। आप जी दे चरणा कमलों विच अरजोई है महाराज जी। आप जी दे पाणी अंदर चार पहर सुख रहण बती तो ही है सच्चे पातशाह। अमृत वेले आप जी ने अपने सचखंड तो दर्शन दीदार दे के प्रकाशमान होके महाराज जी तख्तां ते संगतां नूं खुले दर्शन बख्शिश कीते ने महाराज जी। उपरंत सुखमनी साहब जी का पाठ किया गया पंजा बाणियों का नितनेम होया महाराज जी। सेवकों पासों बेंत फुल्लां हो गई। आप जी बख्शण योग हो महाराज जी। बेंत संगत अमृत वेले दियां हाजरियां आप जी के चरणा कमलों में बैठ के भर रही ने महाराज जी। सारियां नूं अपने दर तो खुशियां दे के निभाजना कड़ा प्रसादी देग हाजिर है गुरु गरीब निवाज। दर प्रवान करो भोग लगे प्रसाद जो भी छके सतना वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जपे महाराज जी। प्यारे पंथ नू चढ़दी कला एकता सदा जय जयकार बख्शिश करो गुरु गरीब निवाज। आप जी दे दर कर दे अनंत सेवक भाई इंद्रजीत सिंह बीबी अमृत कौर महाराज जी कनेडा इमीग्रेशन के कार्यों लई अपने पोते काका मनजोत सिंह दे कारजा की इमीग्रेशन कैनेडा की महाराज अरदास बेनती लैके हाजिर हुए ने। बेअंत माया भेटा कर रहे ने मेरा करो गुरु गरीब निवाज। कीता लोड़ी है कम सोहर पया की है कारज दे सवार सतगुर सच्चा की है संतां संग निधान अमृत चाखी है पै पंजन मेहरबान दास की राखी है बच्चियां दे कारज रास करो महाराज जी। फिर कर बैसो हरजन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे दुष्ट दूत
परमेश्वर मारे जन की पैज रखी करतारे बादशाह सा सब वस कर दीने अमृत नाम महारस पीने निरप हुए भजो भगवान साध संगत मिल कीनो दान शरण परे प्रवंत्र जामी नानक ओट पकरी पर स्वामी गुरु गरीब नवाज तुहाडे दर कर दे कीर्तनिया दे टहलिया दे भी महाराज जी इमीग्रेशन दे कार्ज दास करो सचे पातशाह भाईंदर जीत सिंह बीबी अमृत कौर तिना दे पोते मनजोत सिंह दे भी महाराज जी कार्ज विच खलो के सबना दे कार्ज रास करो बख्शिश करो मेहरा करो संपूर्ण आसा दीवार कीर्तन प्रारंभ करन दी आग्या बख्शिश करना पवित्र हुक्मनामा बख्शिश करो हुक्मनामे ते चलन दी समर्था सुख होवे नाम चेतावे नानक नाम वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की दोहरा गया पही अकाल की तब चलायो पंथ हुकम है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की जो प्रभ को मिल बोच है राज करेगा खालसा आकी रहे ना ख्वार होए सब मिलेंगे खंडा जाके हाथ में कल भी सो हमरी रचया करे गुर कलगी सो हमरी रचया करे गुर कलगी तर बोले सो निहा वाहिगुरु जी का खालसा।

देख कहो पावे मन सोए, नानक कहे अवर नहीं कोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिलावल अष्टपदियां महला पहला कर दसवां। एक ओंकार, सतगुरु प्रसाद निकट वसै देखे सब सोई, गुरमुख विरला बूझे कोई, बिन पै पय भगत ना हुई, शब्द रते सदा सुख होई। वाहिगुरु जी का, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दा कोटान कोट शुकराना। अमृत वेले दियां हाजरियां, दिन दी शुरुआत महाराज दे दर्शन दीदारां तों, कर्मां वालियां रूहां जिन्हां दी जीवन विच महाराज दा दर्शन है, अमृत वेला है, कन्नां नाल बाणी दा प्रेम है, अखां विच गुरु दा दीदार है। महाराज कहिंदे ने ऐसे गुरुमुख ऐसियां पैणा बहुत साजी ते निवाजियां जांदियां ने। महाराज दे घरों सारियां खुशियां बरकतां नाल चौलियां भरदियां ने। सच्चे पातशाह मेरा करन जिन्हां जिन्हां दी जो भावना है, सच्चे पातशाह वह भावना गुरु दरबार विचों पूरियां करन, चौलियां भर के साडियां भी तुहाडियां भी अपने दरबार तो भेजण। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे, सरबत दा भला। आओ बड़े प्यार नाल अति सत्कारयोग साडे अपने सन्मानयोग कीर्तनीय भाई साहब जी, भाई हरभजन सिंह जी लहरी, वो आप जी संपूर्ण आसा दीवार दे कीर्तन द्वारा निहाल करनगे जी। गुरु रामदास सच्चे पातशाह, धन गुरु नानक साहब जी, गुरु ग्रंथ साहब जी सारे जीवां ते मेहरा करन जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

वस्त्र न पहरे निस कहर मोन विगुता क्यों जागे गुर बिन सूता पग उपे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाए मूरखंदे पत गवाए बिनावे किस थाए न पाए रह बेबाणी मणि मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी।

0: और मूर्ख पंडित एक मत हुज्जत संजय करे प्यार। धर्मी धर्म करे गावा वे मंगे मुख द्वार। यदि सदा वे जुक न जाने छट बह कर बार। सबको पूरा आपे हो वे घट न कोई आखे। पत परवाना पिछे पाइये ता नानक तो लिया जापे महला पहला।
1: सोजी नानका सच्चा विखे सोए सबनी शाला मारिया करता करे सोए। अगै जात ना जोर है अगै जियो नवे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जना कुदुत पाया।

करी ना होई, बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ। जात मह जो जोत मह जाता, कलकला भरपूर रहा, तू सच्चा साहिब सिफत सवाले।

मंजूर चली चंद्रा उल्कान कृष्ण जादम पया पार जात गोपी ल आया बंदरा बन में रंग किया कल में अंबेदा तरबण हुआ नाव खुदाई अलह पया नील वस्त्र ने कपड़े पहरे तुल पठानी अमल किया।

सुत परम है दूज लग जाए जमन मरना हुक्म है पाने गावे जाए खाना पीना पवित्र है दितो निजिक सवाए नानक जिन्नी गुरमुख बुझया तेना सूतक नाय पौड़ी सतगुरु।

0: नानक निहाली पै सवन कुप रहन खड़े तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा।
1: आप सज करे आप जाय रखे आप तिस जंत पाए कह देखे थाप उथाप।

शासन कर दिया। बोलो जी वाहेगुरु, एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्रीवती पाठ छे दस में प्रथम भगवती समर क्या है गुरु नानक लई क्या है फिर अंकित करते अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरन श्री हर राय श्री हर कृष्ण की आय से सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर है कारण उन्होंने आवैता है सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह ने पुत्र आत्मा गुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पहादार त्यंतर के खालसा बोलो जी वाहेगुरु। गुरु महाराज आप जी दे पंच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटियां जपियां तपियां नाम जपिया वन चुकया देख चलाई तेग वाहि देह कंडिट कीता तेना प्यारिया से प्यारिया की कमाई दा त्यंतर के बोलो जी वाहेगुरु। जिन्ना सिंगा सिंगणियां धर्म हे सी दिते बंद बंद कटवाए कोपरियां लाइया चकड़ियां के चढ़े आर नचराए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतियां धर्म ने हारिया से किसे तरीके संसंग निभाया तिना नहीं कमाई दा त्यंतर के बोलो जी वाहेगुरु। पंजा दशता समय गुरुद्वारा दा त्यंतर के बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। नाम चेताव है जित आवन का सदका सर्व सुख हो है जहां जहां गुरु खालसा साहब आयत देव ते की फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बोले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान साह दान प्रोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दर्शन सुना क्योंकि चंदे बूंगे जुगो जुगा टल धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु। सिखा दा मन नीवा मत विची मत पत के रखे आप वाहेगुरु। गुरु की बनवाज पंथ सदा साहब जता जी गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब गुरु गुरुद्वारे गुरुताम जिन्हों को पंथ छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन दिखा के सेवा संभाल दादा है खालसा जी ने बख्शो ये ओटियां की ओट गुरु ने आसरिया दे आसरे गुरु तन तन गुरु ग्रंथ बता दियो दुआ कर जोड़ करो अरदास तुत पावे ताने रास। हे गरीब नु आज जी आप जी के चरण कामना अरदास विस्तार जी आपने बख्शिश की है अमृत वेरे प्रकाश मान हुए संगत दर्शन दादे के निहाल उतार दियो बेहद बाणिया ने पाठ ऐस वे रागी सिंह ने आपके चरण जासा की वारत की तर कीते ने विद्वान वीर ने अज हुक्मनामे की किताब तैयार की कृपा करो होइया भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सच कर प्रवान करो बाणी का पाप सारिया संगत हिरदे नुकसान की वारत करो जी अगो तो शोधे पितर बाणी टाणी बार बुद्धि बख्शिश करो। गरीब महाराज इस खुशी में आप दी बख्शिया दातों में पितर कराम शहादत देगा तैयार करके हाजत आर आप दी भोग लाओ शीर प्रसाद शाह संगत की रसना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम च बख्शिश करो दता दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश देख रखे बख्शिश करो जी कृपा कर दता आप जी बख्शिया दातों जो लगने तुर सवारियां प्रवान करनी आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टैलिया सिंह सिंगड़ियां तंदुरुस्ती बख्शो चट करो बख्शो सदा इस चित्र अपने चरणा सेवा की भावना बख्शन प्रार्थना करो जी गरीब भाई कृपा करो अमृत वेद तो लैके दरते आई साफ संगत दर प्रवान करो घड़िया ने खिलाओ संगत का दरते तिर फुर पेटा प्रवान शुभकान पूर्ण करो जी गुरु गरीब भाई कृपा कर दता खालसा पंथ नूं सिख कौम नूं एकता सुआग प्यार दी बख्शिश करके सतगुरु दी दात बख्शो चाना ना जोड़ो गुरबाणी दे प्यार बख्शो ता हर मैदान जान फदे बख्शे प्रार्थना करो जी गुरु गरीब भाई कृपा कर दता दूर दुआले कराने बैठियां लाइक तक धर्म कारियां सारी संगत हाजरियां प्रवान करो घड़िया ने खिलाओ तारा अपनी कृपा की दी संगत नूं बख्शे संगत आप चरण धन्यवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद माया ऑनलाइन गुरु कर लें गुरु का सेवा संघ चार संगत माया पेटा कारी चरण प्रवान करो बही कर सब कमाइयां सबल करो कार्य वादे बदता सब संगत दिन शुभकामनावां सरना पूरी करो जी सर मेहरा तो करो सेवा प्रवान करो पुल माई बख्शो पवित्र हुक्मनामे बख्शे करके उपरंत लड़ी वास्ते आज पाठ करने वास्ते आज्ञा बख्शो रहते का सुवार के चरण तुरा जी बनाओ।

मत गुरमत राम रसाला रहाउ, गुरमत नाम त्याइय हर हर, मन जपिय हर जप माला, जिनकै मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बन माला, जिन हर नाम त्याया तिन चूके सर्ब जंजाला, तिन जम नेड़ न आवई गुर राखे

त्रिकुटी फोर परम भौ भागा लजपानी मटकी माट कल युग गुरपूरा तिन पाया जिन तुर मस्तक लिखे लिलाट जन नानक रस अमृत पिया सब लाथी।

रे मन टहल घर सुख सार, अवर टहला झूठिया नित करे जम सिर मार। रहाउ जिना मस्तक लिखिया ते मिले संगार, संसार भौजल तारिया हर संत।

जैसे भूखे भोजन मात, जैसे किरकह बरस मेघ, जैसे पालन सरन सेंग, गरुड़ मुख नहीं

जन नानक सद बलिहार माली गौड़ा महला पंजवा मन तन बस रहे गोपाल दीन बांधव भगत।

मधुर मधुर तुन अनहत गाजै रहाओ। तन तन मेगा रूमावली, तन तन कृष्ण उडै कांबली। तन तन तू माता देवकी, जिह गृह रमैया कवलापति। तन तन

कहाओ। बस जल नित न वस्त अली अल, बस जल नित न वस्त अली अल, मेर चचा गुनरे चंद कुमुदनी दूर हो निवसस, अनभव कारण रे अमृत खंड।

गया सो जोबन धन पछताणी। तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा। भणत नानक अंदेसा एही, बिन दर

इंद तपै पेखारी, माने हुक्म सो है दर सचै, आकी मरह अफारी, जंगम जोद जत

होए, ज्ञान रत्न मन माजिए, बहुड़ न मैला होए। जब लग साहिब मन वसै, तब लग बिघन न होए, नानक सिर

तनक चढ़ाई, गुर कै शब्द मरै मन मारी, सुंदर जोगा धारी जियो। हम मैं जलिया मनो विसारी, जमपुर वजह खड़ग करारी, अब कह कहे नाम न मिलई, तू सहो जियड़े भारी जियो। माया ममता

करो कृपा एक बार। एक बार दास बोलेगा, एक बार सारी संगत ने बोलना है। हाल बहुत बड़ा है, तुसी बोल रहे होगे मेरे कन्ना च आवाज नहीं आ रही है, सो बेनती है एक बार असी बोलांगे, एक बार तुसी बोलना है। असी बोलांगे तुसी ना बोलना, तुसी बोलोगे तो असी नहीं बोलना। आप गाने वास्ते आए हैं, फिर एक शब्द की हाजिरी होर भर के बहुत ही सत्कार हो गुरु रामदास महाराज जी के वरसाए कीर्तनी भाई साहब भाई इंद्र जी सिंह जी खालसा जी, वो भी पहुंच चुके हैं। दस दिन के बाद उन्होंने हाजिरी भरनी है, सो करो कृपा उची आवाजाएं चो।

जिसको नाम दिया नाम सुजन निर्मल दिया भगत भगत सुनिया जय लोए जा गए है कोए साचे दे सचाया कार सच वर्त सचा